0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 एम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौ। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौ।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: Smart, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: サンプルを飛ばしてください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन गैसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य का क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घासपात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानु आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखी सुनील जुन बेसी उपभोक्ता समिति सुनिश्चित।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्केल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888022 और 9842880300

0: लु एफएम 101.2 मेगाहर्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु

0: 才华就你所路 FM 不等等
1: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: सांचे सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: 스페셜 함부로 퍼지도록 그러사이.
1: सूचना सुरंग यूनिवर्सिटी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य का क्रम में माथिल्लो सुरंगबाट ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में नस्पात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राख्नुहोस्। सिभिल जुन बेसी उपभोक्ता समिति सुनिश्चित

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Sound check. Surya Fan. Studio time.
4: It's 7 p.m.
5: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: check. Sulu FM, studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंड नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू.
0: सीधा कुरा प्रश्न विचार जानो रेडियो नेटवर्क अहिले राती को 8 बज्यो.
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो.
0: राष्ट्र को स्थान किसान.
1: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस. अहिले तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ. अब प्रस्तुत छ आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण.

0: स्वयं रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी और करोड़ों
1: टाइम 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: Sam J. Solu FM. Studio time.
1: 10 p.m. रात को 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुपुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.